0: ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर सूर्य
2: घर. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे. भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा. भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया. झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की. रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित. और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे. वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे. इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है. यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर्विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं. श्रीवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली.
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे. श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर

0: परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
2: UPI के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए UPI सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। PCI ने कहा है कि UPI देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
3: वी हैव सीन द कॉमेंट्स।
4: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
3: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
3: While we are coordinated,
4: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी

0: സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में

0: राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर

0: जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।

0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters Tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: दैट वॉज राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा बजेंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री

0: जो सीकर जा रहे हैं, और अगर वो इस तरह के डिस्प्यूट में उनके ऊपर कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या अंग भंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है कि साहब हम आपको इंश्योर भेज रहे हैं यहाँ से कि आपको मतलब हम इतना कंपनसेट कर रहे हैं ओरिजिन वाइज, जून वाइज या जो भी फ्लैग वाइज, कुछ प्रकाश
1: डाले। देखिए प्रेमजी जी, आपकी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है। ये सी फेयरर्स के बात में बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग रहते हैं या जो लोग पानी के जहाज में बहुत महीने बिताते हैं, घर से दूर रहते हैं। ये बात ठीक है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आजकल थोड़ा सा उसमें रिजर्व्ड है, बहुत हाई रिस्क एक तरह से ये नौकरी बन गई है। तो मुझे लगता है इसमें प्रेमजी जी जो मैं बात आपको कहना चाहता कि जिस भी वेसल पर ये सी फेयरर्स जाते हैं, और मेरी जानकारी मुझे पता है इस मामले में दुरुस्त है, वो वेसल आपको इंश्योरेंस देता है। आप जब पानी के जहाज पर बहुत दिन तक रहते हैं, एक महीना, 15 दिन, 2 महीने रहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वो शिपिंग लाइन देती है। तो शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस तो आपके पास है ही, और वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 10-20 हजार रुपए का होता है, वो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है। आपकी जो सैलरी होती है उसका वो एक एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से उतने एक्स टाइम्स वो इंश्योरेंस देते हैं। तो आपकी बात ठीक है कि भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को भी या भारत सरकार को, देखिए जब आप निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी निजी कंपनी में नौकरी आपकी चॉइस से है, आपने स्वयं ऐसा प्रोफेशन चूज किया है। मुझसे सवाल प्राची और निशित पूछा गया एक जगह के भाई इनके लिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा देखिए अब ये तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसी नौकरी जब तक ये सब तरफ युद्ध चल रहा है और तब तक मैं समझता हूं ऐसी नौकरी से अगर बच सके तो बचे, और खासकर ये नहीं तो कम से कम उस रूट पे ना जाएं। आप इधर ट्रैवल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, पर उस रूट पे ना जाएं, पर अब मजबूरी है, अगर जाना ही पड़ता है तो आप अपनी शिपिंग लाइन से बात करिए, वो शिपिंग लाइन से ही आप रिक्वेस्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका इंश्योरेंस बढ़ा दे। बाकी यहां पर आपकी बात दुरुस्त है, अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदा हमारी ये बात सुन रहा है तो मैं उनसे भी आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की तरफ से भी अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया जाए। आपकी सलाह हमने नोट कर ली है, और जब भी कभी मुझे निजी तौर पर मौका मिला मैं इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
2: और दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं, हम अमित की कॉल लेंगे, मगर उससे पहले आइए जयपुर से जुड़े जितेंद्र से। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: धन्यवाद सर। जैसे आप एफएमसीजी बोलते हैं, एफएमसीजी सेक्टर के लिए दो चार सेक्टर आप बताएं, तो एफएमसीजी में भी जैसे कई तरह का है, जैसे डाइवर्सिफाई एफएमसीजी, पर्सनल प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्या? तो पहला तो प्रश्न ये है, और दूसरा कि एक देश का पहला या दूसरा प्राइवेट बैंक है, उसके भी कुछ शेयर के दाम गिरे हैं, तो मैं उसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहा हूं, तो क्या ठीक है क्या?
1: जितेंद्र जी, एफएमसीजी जब हम बोलते हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो आपने जो जिक्र किया, कुछ कुछ कंपनियां खाने पीने की चीजों में है, जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, इस प्रकार की चीजें बनाती हैं। अच्छा, कुछ ग्रोसरीज में है, शैम्पू, तेल, साबुन वगैरह, इस प्रकार की फेस क्रीम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इन सबको मिला के हम जितेंद्र जी एफएमसीजी बोलते हैं। और इनको फास्ट मूविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मान लीजिए टूथपेस्ट लेकर आए तो टूथपेस्ट आपका क्या हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा, साबुन लेके आए 5-7 दिन 10 दिन चलता है, ऐसे ही खाने का सामान लेके आए, बिस्किट, तो इनकी तो वैसे ही शेल्फ लाइफ होती है। तो हम जब एफएमसीजी जब मैं बोलता हूं तो मैं इन सबको मिला के बोलता हूं। खाने की आपने जो बात करी, खाने की भी हो गई, ये हो गई, मैं दोनों को मिला के बात करता हूं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता था। दूसरे आपने प्राइवेट बैंक का बोला, प्राइवेट बैंक देखिए यार, नाम तो लेते नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन से प्राइवेट बैंक का कह रहे हैं कि जिसके शेयर गिरे या कौन सा हुए। अब ये तो जब तक ये ऐसा सवाल है कि जब तक नाम ना खुले, और नाम हम लेंगे नहीं, ना आप लेंगे ना हम लेंगे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस बैंक के। बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें इस साल तो नतीजे उतने बुरे नहीं रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं मुझे नहीं पता किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ एक के मिले जुले थे, बस ज्यादातर के अच्छे थे। तो ये तो जितेंद्र जी, जब तक नाम का राज नहीं खुलेगा, और वो खुलेगा नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इसमें। जी
2: आइए निश्चित अब जुड़ा जाए अमित से, अमित हैं दिल्ली से। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सर,
2: नमस्कार
4: सर, सबसे प्रश्न ये है मेरा सर
1: जी।
4: सर अभी जो ओमान और ईरान के बीच जो वार्ता चल रही है हॉर्मोन्स ओपन करने के लिए
1: जी,
4: तो आपको क्या लगता है सर कि ये वार्ता सफल रहेगी? और दूसरा प्रश्न ये सर कि हाल ही दिनों में कल या परसों अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पर मंजूरी दी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि रूस से इंपोर्ट करने वाली जितने कंट्री है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। सर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राइट्स मिल गया तो क्या हम भी रूस से इंपोर्ट करते हैं तेल, तो क्या हम पे भी इस तरह का संकट मंडरा रहा है क्या सर की 100% टैरिफ लग जाएगा उनको?
1: अमित, आपके पहले सवाल का जवाब, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मूज पर कोई समझौता हो जाएगा नहीं, ये तो दिस इज अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये तो हर किसी के मन में है और हम सब चाहते हैं कोई ना कोई समझौता हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही शुरू हो। मुझे लगता है मार्केट मंत्रा या कोई भी एक्सपर्ट इस पर टिप्पणी कैसे, इस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप भी स्वयं टिप्पणी नहीं कर पा रहे कंफर्म तौर पे, खुलेगा कि नहीं देखते हैं क्या समझौता होता है। जो आपके दूसरी बात पूछी, इसको हम बाईपार्टिसन ग्रुप है अमेरिका में सेनेट में जिन्होंने ये बिल रखा था, इसको लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान 2025 बिल कहा जा रहा है। जी हां, 86-11 से ये बिल पास हो गया है सेनेट में। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा ये बिल, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा और उसको अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे। 5 देश हैं इसमें, मैं बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि शायद इसका हम जिक्र मार्केट मंत्रा में अलग से भी इसके बारे में आज करेंगे। और इसमें इंडिया है, चाइना है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और अजरबैजान है। इन 5 देश सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलेटरल ट्रेड डील है उस पर लगातार बातचीत बहुत समय से चल रही है, और अगर ये हो जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं इसका अमित, और देखते हैं अगले हफ्ते क्या नतीजा आता है। पर आपका जो अंदेशा है, आपका जो डाउट है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, दुरुस्त है। जी
5: यस शरद जी, एंड कंटिन्यूइंग द स्टोरी, द यूएस सेनेट हैज वोटेड टू अप्रूव अ बिल टू सैंक्शन रशिया एंड की बायर्स ऑफ इट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज चाइना एंड अदर कंट्रीज, क्लेमिंग दैट सच ट्रेड हेल्प्स फ्यूल द यूक्रेन वॉर। द बिल renamed as Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are the top 5 importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 to till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. Sharaji would like to know, you know, with the passing of this bill, of course, you know, the other house has to pass the bill now. But even earlier, we saw a couple of months back as well that President Trump, you know, in all his whims and his fancies, he would impose up to 100% or even more tariffs. So what difference does it make with this bill being passed and the earlier actions of President Trump?
1: Okay, so let's understand this, because the current tariffs which were being agreed with India until now, they were two-tier tariffs. One was the MFN tariffs, the most favored nation, basic 10%. Mm. And on top of then, Section 301B of the US Trade Act 1974, India was subjected to another 10% tariff. This was for forced labor, that India was probably using some raw material for forced labor. And so in all 20%, which wasn't bad for us, although India was protesting that we should not be tariffed because we are using forced labor, because there was no product in India which was going on forced labor. There were some Chinese imports,
5: right,
1: supposedly, which America said, which are using forced labor. So that was still okay. But this 100% would really put us in problem. As I said, there are 5 countries. There's India, there's China, there's Slovakia, Hungary, and Azerbaijan. And you know, out of the total Russian oil, about 50% of the oil is being imported by China. About 37% of the oil with Russia currently imports is being imported by India. For Indian imports, it's about 50%, which is the total 88% oil that we import. 50% is coming from Russia. So I think this will be extremely detrimental, because half of the oil we are importing from there, I hope it doesn't happen. Because and I must clarify to the listeners that this passing of this bill in House of Representatives next week, hopefully, which is being anticipated, this will not impose tariffs on India by default. It gives powers to the President of the United States to impose. So let's see what President Trump decides after this bill is passed. But it's definitely a matter of concern for Indian exporters.
5: Right.
2: श्रोताओं, भू राजनीतिक गतिविधियों पर और भी विस्तार में बातचीत करेंगे। हमारे समक्ष शरद कोहली जी बैठे हुए हैं, आप भी उनसे अपना सवाल ले सकते हैं। मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि सप्ताह के भीतर हमारे प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजों के कारण ये बढ़त आई। आरबीआई की मौद्रिक नीति की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 405 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 78,499 पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक यानी लगभग 0.8% बढ़कर 24,571 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1% जबकि स्मॉल कैप 100 में इस सप्ताह 2.5% से अधिक का उछाल आया। इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में इस सप्ताह बढ़ोतरी हुई। सभी नामित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल

0: इंडस्ट्रियलाइजेशन 7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 494 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए और 21 पैसे पर बंद हुआ। इधर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से विशाल। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: मार्केट में नमस्कार जी, जैसे मैंने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, मगर डिफेंस सेक्टर अभी थोड़ा सुस्त पड़ा है, क्या कारण है और क्या कहते हैं जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला वो कब तक होगा?
2: डिफेंस सेक्टर की आपने बात करी विशाल, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर भारत का एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है, उसमें बहुत ही शेयर्स में आगे ऊपर जाने की संभावना नजर आती है। भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब तो भारत एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस का, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में कंपनी का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। विशाल, थोड़ा सा लंबे वक्त का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। बीच बीच में ये जो फेसेस आते हैं जब बिल्कुल शेयर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उससे जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी होती है कि भाई पैसा लगाया हुआ है, बढ़ तो रहा नहीं, इससे अच्छा तो बैंक में ही रख देते। बहुत तरीके के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं। तो विशाल, ये लंबे वक्त को रखने की चीज है, इसको रखिए, आप 2 से 5 साल का नजरिया रखिए, ये बहुत बढ़ेगा। दूसरा, आपने कहा ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कब होगा, मुझे लगता है ये तो ऐसा सवाल है कि वो एक पुरानी पिक्चर का वो था, टप्पा को किसने मारा, ये इस टाइप का सवाल मुझे नजर आता है, क्योंकि ये तो सबको, सब सारी दुनिया इस सवाल की तलाश कर रही है कि कब होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझौता दुनिया में शांति लाएगा। तो जैसे आपके दिमाग में सवाल है और ये हम सभी यहां जो बैठे हैं, हम सबके दिमाग में सवाल है, काश हम आपके सवाल का ये जवाब दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो फिर हम तो चाहते हैं कि आज अभी बीते हुए कल में ही हो जाए।
0: बिल्कुल, भिले से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्ते प्राची जी, मार्केट मकर टीम को नमस्ते, और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर जी, इनकम टैक्स में यदि किसी का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही अर्निंग है और 1,80,000 रुपए के करीब करीब आता, मतलब 4 लाख से कम है
2: जी,
3: तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना अभी भी मैंडेटरी है कि अब वो ना करके भी कोई दिक्कत नहीं है?
2: रवि जी, अगर खाली इंटरेस्ट इनकम है, और ये देखिए कहता है इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं कटा है, अगर रिफंड है तो फिर तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, वरना रिफंड कैसे आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी इनकम आपने बताया कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो फिर तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे रिफंड कैसे आएगा। और मैं 2-4 चीजें और बता दूं, कुछ लोगों को वैसे ही फाइल करना मैंडेटरी होता है, मान लीजिए आपने 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे 10 लाख सॉरी क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया है, आपने विदेशी यात्रा करी है, आपका 2 लाख से ज्यादा बिजली का बिल, 1 लाख से ज्यादा साल का बिजली का बिल आया है, तो अब ये सब चीजें भी बता दी गई, तो ये भी देखनी पड़ती हैं। पर सबसे ऊपर जो रहता है वो ये है कि आपको अगर रिफंड लेना है रवि जी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मुझे लगता है रिटर्न फाइल करना एक अच्छी बात है, और अगर आपकी कोई इसमें कॉस्ट नहीं आ रही और वो आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल की हुई अक्सर कल को वीजा लेना है, कोई लोन लेना है, आपके काम आ सकती है। पर हाँ, टेक्निकली देखें रिफंड नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बेशक ना भी फाइल करें तो चल जाए।
0: बीइंग अ सिविलियन, ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
2: नहीं, जिम्मेदारी है, पर उसमें प्राचीन का सवाल यहां से आया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे हाँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें जो मैंने बोली ये है, फिर तो जिम्मेवारी है, पर इनका सवाल ये था कि इनमें से कुछ नहीं है, इनका 4 लाख से कम है, तो फिर फाइल करें ना करें, तो तकनीकी जानकारी भी मुझे लगता है हमें देना बनता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ राम किशन जी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो हेलो
2: जी।
4: हाँ, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
2: जी रामकिशन जी,
4: सीनियर सिटीजन हूँ मैं, तो मेरी इनकम जो है ब्याज से है
2: जी।
4: हाँ, 10-5 हजार वैसे इनकम हो जाती है टोटल
2: जी।
4: तो 3 लाख 3,20,000 तो आयकर रिटर्न भरनी जरूरी नहीं है?
2: रामकिशन जी, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। रामकिशन जी, बहुत वरिष्ठ नागरिक, आप आवाज से बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बहुत सीनियर लग रहे हैं, हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम, अभी आपसे पहले भी जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है रामकिशन जी अगर जो आप इनकम बता रहे हैं इसमें तो जरूरी नहीं है, पर ये देख लीजिएगा कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं काट लिया है बैंक ने आपकी जो ब्याज से इनकम है। अगर टैक्स कटा है रामकिशन जी, फिर आपको फाइल करनी जरूरी है, वरना देखिए मैं प्राची निश्चित तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कितने जिम्मेवार हैं, उनको लगता है कि हमारी थोड़ी भी इनकम है, और आयु के इस स्टेज पर वो अभी भी चाहते हैं कि वो कहीं उनसे कोई कंप्लायंस में गलती ना हो जाए, और यू नो दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। रामकिशन जी बिल्कुल, अगर इनकम टीडीएस नहीं कटाया तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, और हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जी।
5: नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी वेलकम।
6: हेलो

0: बेनिफिट ले सकते हैं, क्या प्राइवेट रिफाइनरी के शेयर्स में अभी कुछ छाल आ सकता है या आएगा, या फिर ये जो ट्रंप की नई कहानी बना रहे हैं कि अब वो उस पर भी अटैक लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावट लगेगी, ये रिफाइनिंग मार्जिन आया तो होगा, किसको मिला होगा, किन कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को, तो क्या उसके शेयर में फायदा है या नहीं है, सरकार ने तो शायद से नहीं किया होगा.
1: शंकर जी, देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज शंकर आई थिंक योर क्वेश्चन एमिनेट्स फ्रॉम द फैक्ट बिकॉज दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड. व्हेयरएज़ ऑन वन साइड दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस अंडर रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर्स व्हेन द क्रूड ऑयल प्राइस इज हाई, द कॉस्ट इज हाई एंड यू आर नॉट चार्जिंग एज मच, यू नो देयर इज अंडर रिकवरी ऑन पेट्रोल डीजल एलपीजी. ऑन द अदर साइड यस यू आर राइट, वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो, सो you know it's a double edged sword, so refining margin varies. But your question is private companies, yes, like for example the Jamnagar refinery in India is one of the finest refineries and that can also refine the Western Texas intermediate oil, you know, which is the harder oil, it's not the sweet oil.
2: Yeah.
1: And that is very tough to refine. So we are one of the finest refiners in the world, and Russia, despite being one of the largest producers of oil, is because of refineries being damaged, it is sending it to India, and it had a shortage of petrol and diesel for that matter. So refining margin is fairly healthy, but the problem is that refining margin comes under pressure because the domestic sale becomes a loss-making proposition. So it's a mixed bag, I would say, Shankar, to answer your question. Whether to invest or not, I would advise that for some time till the matter settle, it will not be a bad idea to stay away from oil companies for retail investors.
2: Right. And moving on to the US markets, the Wall Street ended higher yesterday as traders interpreted an unexpected decline in the US jobs in July as a sign that the Federal Reserve may not need to raise interest rates soon. And among the major indices, the NASDAQ Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 rose 0.6% to settle at a record closing high of 7,700. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. For the week, the Nasdaq surged 5.2% and the S&P 500 soared 3.6% and the Dow climbed 3%. On the economic front, the U.S. Labor Department said non-farm payrolls fell by 23,000 in July, while the unemployment rate edged down to 4.1% in July from 4.2% in June. Sharaji, very briefly, how do you see the interplay of the U.S. Senate bill, which was just passed in the Senate, with the U.S. markets behaving in the coming maybe a week or 10 days' time?
1: Well, U.S. markets have been going gung-ho, if you ask me, over the throughout the war. Mm. And I think this data will this data is a very interesting data, because on one side, this is bad that people are not getting jobs, the job data. On the other side, what is taken positive out of this data is that there's going to be no inflation now. So or lower inflation, which means the Fed may not hike the interest rates. So this turns out to be a double-edged kind of an announcement. Overall, I think the American markets see more on the positive side. So we are expecting the market to surge. In fact, you saw the commodity markets rising because of this.
2: Right. Next caller is Virender from Delhi. Virender ji.
3: Namaskar.
2: Namaskar.
3: Copy to all. Dr. Kohli, मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस दिन से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है
1: जी,
3: और अमेरिका जिस दिन से टैरिफ ज्यादा लगा रहा है बदला लेने के लिए या डराने के लिए
1: जी,
3: अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रहा ना अमेरिका, हमारी ऐसी मार्केट को छोड़ करके अगर हम ना भी बेचें तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है. जैसे कि हमने कम से कम 40 देशों से हमने MBA मतलब एग्रीमेंट कर लिया है और ये हमारे लिए फायदेमंद है, डोंट यू थिंक सो?
1: बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने तो जवाब खुद ही दे दिया, मेरे लिए जवाब छोड़ा ही नहीं है. बहुत आप जो कह रहे हैं सब पे कॉपी टू ऑल, मैं टिक मारता हूं और आपके लिए कॉपी टू ऑल, आपने सब बहुत बढ़िया बात कही है और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा. उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे उनके देश में महंगाई बढ़ती है. टैरिफ आके लगता किस पे? खुद पे ही तो लगता है, इंपोर्टर्स पे लगता है और अमेरिकी जनता को देना पड़ता है. आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वीरेंद्र जी.
4: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा. एक वक्तव्य में पीसीआई ने कहा कि हर भारतीय बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकता है. इसने ये भी बताया कि छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पीसीआई ने कहा कि यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक फिनटेक कंपनियां एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी धोखाधड़ी से बचाव और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं। पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट सर्विस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कोई भुगतान करना पड़ेगा।

0: ये किस तरीके से एक भ्रम तोड़ा गया है कि ये शायद आम ग्राहकों को भी जो है इस पर भुगतान करना पड़ेगा।
1: जी हाँ, लोगों में एक भ्रम फैल रहा था कि शायद हमको देना पड़ेगा 2000 रुपए से ऊपर के, और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये जो जिस व्यापारी से आप डील कर रहे हैं वो भी बड़ी पेमेंट पे उनको देना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है। तो मुझे लगा सरकार ने उस भ्रम को क्लियर कर दिया, लोगों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा। और सच बात बताएं, अगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी भी तो सब्सिडाइज हो रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए।
2: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप्स ओवर 0.5%, द वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद स्ट्रॉन्ग गेन्स बॉयड बाय मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, एंड द यूपीआई ट्रांजैक्शंस टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स एंड स्मॉल मर्चेंट्स, क्लैरिफाइज द एपेक्स डिजिटल पेमेंट्स बॉडी पीसीआई। एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फ्रॉम द एंटायर टीम हियर। इट्स गुडबाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: यू आर लिसनिंग टू अ रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ टुडेज मार्केट मंत्रा प्रोग्राम, ओरिजिनली एयर्ड एट 6:30 PM।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

11:41 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास।

रफ़ी साहब की आवाज़ थी और इस गीत को सुनते सुनते अचानक मैं भी माइक के पीछे अपने आप को सिंगर समझने लगा और इस गीत के साथ गुनगुनाने लगा। कुछ गीतों को हमने हजारों बार सुन लिया हो, सुन सुन कर घिस दिया हो, हमें याद भी हो गया हो वो गीत, लेकिन घिसने के बाद भी उसमें से वो मधुरता, वो सुंदरता, वो खूबसूरती कभी कम नहीं होती। और शायद ये इन गीतों की खूबसूरती है जो इतने सालों बाद भी हमें अपने साथ गुनगुनाने पर मजबूर करती है। प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास, और हमारे और आपके साथ ये प्यारे से गीत।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और इस गीत से पहले आप तक एक अलग सा गीत पहुंचा था, मिट्टी में सोना इस फिल्म का। और इस गीत को जब सुनते हुए एहसास हुआ कि किस तरह से इन गीतों में इंग्लिश के शब्द हुआ करते थे। बहरहाल घड़ी बता रही है कि अब विकास के जाने का वक्त हो चुका है, इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचेंगे। वे तिरुवन्नामलाई से सड़क मार्ग के जरिए पुदुचेरी पहुंचे और लोक निवास गए, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुदुचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने उतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में

भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि सोनितपुर, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरांग, जोरहाट, धेमाजी, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और विश्वनाथ समेत 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है कार्यक्रम पानी पे लिखी कहानी का। एक ऐसी कहानी जो आपके मन के कोने में कहीं घर कर जाए। आज आइए सुनते हैं जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल।
1: तो आइए सुनते हैं ये कहानी हर श्रृंगार के फूल। प्राजक्ता आज दफ्तर के लिए जल्दी निकल पड़ी थी। दफ्तर में जरूरी काम था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने टैक्सी ली, पर वो भी जुलूस में अटक गई।
2: ओहो, कहाँ फंस गई? 10 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है और उससे पहले मुझे दफ्तर पहुंचना जरूरी है। फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आज सीईओ साहब भी आने वाले हैं। ओहो, ये ट्रैफिक का हाल, तंग आ गई मैं। ओहो, और कितनी दूर तक ऐसे ही चलना होगा भैया?
3: अरे मैडम, अभी क्या बोलेगा, ये हर साल का है। इधर जुलूस निकला, उधर ट्रैफिक जाम। ये मंदिर के सामने हर साल आज के दिन मस्त जतरा लगता है। अभी आज के दिन आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा मैडम, लेकिन टेंशन नहीं लेने का मैडम, अपुन पहुंचा देंगे आपको।
2: हाँ हाँ, तुम तो पहुंचा दोगे, लेकिन एक काम करो भैया, आप टैक्सी रोको, मुझे यही उतार दो।
1: यूं ही बैठे बैठे इंतजार में और समय गवाना उसे गवारा न था। वो टैक्सी छोड़कर पैदल ही चल पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो गई। प्राजक्ता प्रेजेंटेशन दे नहीं पाई, सीईओ साहब से डांट पड़ी, सो अलग। कितनी

0: तैयारियां की थी उसने आज के दिन के लिए। पूरे दिन प्राजक्ता का मन उदास रहा, ठीक से लंच भी न ले पाई। शाम को बुझे मन से घर पहुंची तो माँ ने पूछा,
1: अरे बन्नो रानी, तुमने बनारस का टिकट निकाल लिया कि नहीं?
2: उफ माँ, काम में मैं बिल्कुल भूल गई। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ,

दो हफ्ते पहले ही माँ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी। प्रेजेंटेशन के चक्कर में प्राजक्ता टिकट कराना भी भूल गई। उसके जी में आया, कह दे मंदिर तो यहाँ भी है, वहाँ जाना क्या जरूरी है। किंतु माँ की ओर देखा तो कह नहीं पाई, कह देती तो माँ उदास हो जाती। उनकी उदासी प्राजक्ता से देखी नहीं जाती।

ऐसा नहीं है कि ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं है, किंतु आए दिन धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाली इन रैलियों से उसे झुंझलाहट सी होने लगी थी, जिस कारण से बनारस जाना भी उसने टाल दिया था। वो काम तो हो नहीं पाया, अब कम से कम माँ को दर्शन ही करा दूं, ये सोचकर उसने मुंबई वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस के तत्काल के 2 टिकट बुक करा दिए। आज प्राजक्ता अपनी माँ के साथ वाराणसी में थी।

होटल ब्रॉडवे में थोड़ी देर आराम करने के बाद सारा शहर घूमते हुए अंधेरा हो चुका था। सड़कों की भीड़ गायब हो चुकी थी। किसी अनजाने शहर में रात का समय भी एक भय का कारण बन जाता है। शाम 4 बजे जिस टैक्सी से प्राजक्ता और उसकी माँ होटल से गंगा घाट गए थे, उसके चालक ने उनकी आपसी बातचीत से भांप लिया कि वे शहरी हैं और यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। चलते समय तो बात हुई थी 200 रुपए में वापस आने की, किंतु शाम तक बातें बनाकर उसने जबरन 1000 रुपए वसूल कर लिए। होटल से घाट की दूरी केवल 2 या 3 किलोमीटर थी, उससे ज्यादा की न थी। गंगा के घाटों और उससे सटे मंदिरों के सारे महत्वपूर्ण स्थल 2 या 5 मिनट की पैदल दूरी के आसपास ही तो स्थित हैं, और सारे दर्शन वो एक बार में पूर्ण कर चुके थे। लौटते समय दशाश्वमेघ घाट पर रुककर अंत में गंगा जी की आरती देखकर वे होटल वापस जाना चाहते थे, किंतु टैक्सी वाला जिद पर अड़ गया कि वो आरती होने तक रुकेगा नहीं। किराया लेकर वो तुरंत निकल जाना चाहता था। वे आज सुबह ही आए थे और कल तो लौटना था, इसलिए माँ इसी समय गंगा की आरती देख लेना चाहती थी। उनका रुकना अनिवार्य था और टैक्सी को जाने की जल्दी थी। प्राजक्ता के लाख कहने पर भी उसने रुकने से साफ इनकार कर दिया। शुरुआत में जो टैक्सी वाला उसे गरीब लग रहा था, वही शाम तक उसे लालची और चालाक लगने लगा। जिसकी दीन दशा पर अब तक उसे दया आ रही थी, उसकी चालाकी देखकर अब उसे अपनी उदारता पर गुस्सा आने लगा। वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी और माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक लगने नहीं देना चाहती थी कि वो तय से दुगनी कीमत वसूल करके उन्हें होटल पहुँचाए बिना देर होने के बहाने चले जाना चाहता है। वो जानती थी कि वो गलत है, फिर भी उसकी गरीबी देखकर उसकी चालाकी पर कुछ भी कहना प्राजक्ता को उचित न लगा। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ टैक्सी से उतरकर गंगा के दर्शन कर प्रणाम करने में व्यस्त थी।

0: बजे।
1: मन में कुछ सोच कर बिना बात बढ़ाए प्राजक्ता ने अपना ठगा जाना स्वीकार कर दिया और उसकी ओर 500-500 रुपए के दो नोट आगे बढ़ा दिए। करारे नोट जेब के हवाले कर टैक्सी वाला टैक्सी मोड़ कर तेजी से निकल गया। उसने आज ही माँ से सुना था,
2: अरे इतिहास से जुड़ा इलाका है, हम तो कह रहे थे कि हम पैदल ही चले जाएंगे, यहाँ तो लोग 2-3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर ही तय कर लेते हैं।
3: अरे माँ, तो ऐसी हालत में तुम्हें क्या मैं पैदल लेकर आती यहाँ पर दर्शन के लिए?
1: प्राजक्ता के दिन भर का निरीक्षण माँ के

0: कहे सत्य को प्रमाणित कर चुका था। ऐसे में टैक्सी वाले को आज 2-3 घंटे की कमाई में ही 1000 रुपए मिल गए थे। इन रुपयों से वह अपने परिवार के न जाने कितने जरूरी काम निपटा लेगा, यही सोचकर ठगे जाने के बाद भी उसने संतोष कर लिया। आरती देखने में काफी समय हो गया था। रात को यहाँ वहाँ घूम कर वे काफी थक भी चुकी थी। अब बस यही इच्छा थी कि जल्दी से कोई टैक्सी मिले और वे होटल पहुँचे। दिन भर तो कई टैक्सी और रिक्शा यहाँ वहाँ खाली बैठे दिखते रहते, किंतु इस समय तो इनका जैसे अकाल ही पड़ गया था। अंधेरा बढ़ने के साथ सड़कों पर भीड़ भी कम होती जा रही थी। एक दो रिक्शे वाले दिखे तो, लेकिन वे होटल तक चलने को तैयार भी न हुए। अब तो स्थिति ये थी कि यदि कोई चलने को तैयार भी हो जाए तो वो उस पर विश्वास भी कितना करे। चिंता, डर, आशंका और माँ की डांट के आगे मौन रहकर रिक्शा खोजने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो मन ही मन भगवान को मनाने लगी। बाबा विश्वनाथ की भूमि पर उन्हीं से सुरक्षा और सहयोग की प्रार्थना करने लगी। तभी पीछे से लगभग 70 की उम्र का एक बूढ़ा धीरे धीरे रिक्शा खींचता हुआ उनके पास आया। उसकी उम्र और उसकी दशा देखकर प्राजक्ता ने उसे अनदेखा करने की भरसक कोशिश भी की, पर शायद उसने दूर से ही उन्हें रिक्शा रुकवाते हुए देख लिया था। उसके पास आकर पूछा,
1: कहाँ जाओगी बेटी?
0: प्राजक्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वे दो लोग और वो बूढ़ा, उत्तर में देरी होते देख उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया।
1: अरे बताओ बेटा, कहाँ जाओगी?
0: उसे लगा कि शायद इसे पैसों की जरूरत है। तभी तो जब अधिकांश रिक्शे वाले घर जा चुके हैं, वो अभी भी अकेला सवारी की तलाश में रिक्शा लिए सड़क पर घूम रहा है। प्रत्युत्तर के लिए वो देर तक उनकी ओर देखता रहा। बड़े संकोच से प्राजक्ता ने कहा,
2: होटल ब्रॉडवे।
0: उसने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया,
1: ठीक है तो बैठ जाइए, छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं 20 रुपए दे देना।
2: अरे नहीं नहीं बाबा, हमें रिक्शे की जरूरत नहीं है बाबा।
1: अरे बैठ जाओ बिट्टी, अब पैदल कहाँ जाओगी? आज अजनबी शहर है, जहाँ कहोगी छोड़ दूंगा। मैं तो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुँचाने का ही काम करता हूँ।
2: क्या?
1: अरे तुम बैठोगी तो इस गरीब को एक बखत का खाने का दाना मिल जाएगा बेटा। 2 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं गया पेट में बेटा।
2: अच्छा ठीक है,
1: बोलो कहाँ छोड़ दूँ तुमको?
2: होटल ब्रॉडवे चलना है बाबा।
1: अरे तो बिल्कुल छोड़ देंगे बेटा, बिल्कुल छोड़ देंगे। बैठिए, अब बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए बहन जी, आप भी बैठिए। ज्यादा नहीं 20 रुपया दे देना, बस बहुत है।
2: क्या 20 रुपए?
0: प्राजक्ता का अंदाजा सही था। उस गरीब के लिए उस समय 20 रुपए भी रात के भोजन के लिए पर्याप्त थे। डूबते को तिनके का सहारा। एक पल को लगा जैसे नियति ने उन्हें एक दूसरे की सहायता के लिए ही भेज दिया है। वे रिक्शे पर बैठ गए और धीमी गति से रिक्शा खींचता वो चल पड़ा। प्राजक्ता ने मन ही मन भगवान से पूछा,
2: हे बाबा विश्वनाथ,

प्राजक्ता मुंबई से अपनी माँ के साथ पहली बार वाराणसी आई थी। उसके लिए यहाँ सब कुछ नया था। उसने बचपन से ही बनारस के घाटों का बड़ा नाम सुना था। मन ही मन बनारस की छवि उसके कच्चे मानस पर रच बस गई थी। चलते समय उसके मन में भी बाबा विश्वनाथ की काशी को देखने का बड़ा कौतूहल था। मन में श्रद्धा और जिज्ञासा लिए माँ के कहने पर उन्हें साथ लेकर वह वाराणसी आई थी।

0: लाखों भक्तगण शिव के नाम पर दक्षिण पश्चिम पूरे भारत सहित देश विदेश के कोने कोने से भगवान की कृपा पाने के लिए आस लिए चले आते हैं। आंखों देखे इस यथार्थ से अचंभित सारी बातों का चिंतन मनन करती हुई वो सामान्य रूप से गतिशील उस रिक्शे वाले के पैरों की ओर देखती रही। वो बड़ी मेहनत से संभल कर पैडल मारता हुआ रिक्शा चला रहा था। होटल पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर सेवा पूर्ण कर देने की मुद्रा में वो विनीत भाव से खड़ा हो गया। उसने प्राजक्ता से कहा,
1: ला बिट्टी आ गया। यही थोड़ी दूर रहता हूँ बिट्टी, यदि कल कहीं जाना हो ना तो बता देना, बुनचारे सवेरे सवेरे आ जाऊंगा।
2: बाबा, ऐसे तो हम सारा बनारस घूम चुके हैं, लेकिन माँ की बड़ी इच्छा है कि एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। तो एक काम करना बाबा, तुम 7:30 बजे फिर से सुबह आ जाना, ठीक है?
1: बिटिया, हम बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता ना करो। हाँ, अच्छा चलते।
0: अगली सुबह 7:30 बजे चाय नाश्ता निपटाकर वे कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि फोन की घंटी बजी। फोन रिसेप्शन से था। मैनेजर ने प्राजक्ता से पूछा,
3: मैडम आपने किसी भोले बाबा को बुलाया था क्या?
2: भोले बाबा? नहीं नहीं, हमने किसी भोले बाबा को नहीं बुलाया।
3: अरे मैडम, भोले बाबा वो रिक्शे वाला का नाम है।
2: हाँ, रिक्शे वाला बाबा बुलाया था, हम तैयार है, बस निकलने वाले हैं।
3: देखिए मैडम, वो तो सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर आकर बैठा है।
2: अच्छा, हम बस तैयार हैं, अभी निकलने ही वाले हैं।
0: इस समय 7:35 हो रहे थे और वो पिछले 1 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि प्राजक्ता ने तो उसे 7:30 बजे आने को कहा था। बाहर निकलकर उसने रिक्शे वाले से पूछा,
2: बाबा मैंने आपको 7:30 बजे आने के लिए कहा था, फिर आप 6:30 बजे ही क्यों आ गए?
0: वो बड़ी सहजता से बोला,
1: अरे बिट्टी, हमारे पास कोई घड़ी तो है नहीं और न पढ़े लिखे हैं, अब क्या पता क्या समय हुआ है। सूरज देवता को देख के टाइम का अंदाजा लगा लेते हैं, हैं? अब हमने सोचा कहीं देर ना हो जाए, तो सूरज उगते ही यहाँ पहुँच गए। अब कोई बात नहीं, हमारी चिंता न करो।
0: दिन के उजाले में उसके चेहरे और हाथ की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थीं। ऊंचा कद, दुबला शरीर, गहरी छोटी आँखें, धूप में झुलसी हुई काली चमड़ी और ये माथे पर तिलक की जगह कैसा निशान है।
2: अच्छा बाबा, आपका नाम भोले बाबा है?
1: भोले बाबा कह लो, कोई कुछ भी कहता रहता है, गरीब का कोई नाम नहीं होता है बिट्टी, गरीब तो ये आदमी होता है, ये आदमी, ये रिक्शा वाला, बस।
0: जगह जगह सिला हुआ कुर्ता, मैली सी धोती।

0: कारण ही नहीं था। प्राजक्ता ने संभाल कर माँ को रिक्शे पर चढ़ाया। सीट के किनारे की टिन जगह जगह से उखड़ी हुई थी। चढ़ते समय कपड़ों के किनारों के फंसने और फटने के डर से वो भी बहुत संभल कर बैठी। इस बीच वो रिक्शे को कस कर पकड़ा रहा। अपने रिक्शे की स्थिति को वो उनसे बेहतर जानता था। उनके बैठ जाने के बाद रिक्शे वाले ने रिक्शे के हैंडल पर टंगा हुआ अपना गमछा निकाला और बड़े धैर्य से गमछे की गांठ को खोलकर उसे प्राजक्ता की ओर बढ़ा दिया। प्राजक्ता ने चौंककर पूछा,
1: ये क्या है और मुझे क्यों दे रहे हैं आप?
0: गमछे में हर सिंगार के ढेर सारे ताजे और खुशबूदार फूल थे। उसके इस व्यवहार से प्राजक्ता को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उन फूलों को लेने से इनकार कर दिया। उसके इनकार पर वो थोड़ा दुखी होकर बोला,
2: बिट्टी ये फूल आज ही सुबह तोड़े हैं। आप बाबा के धाम जा रही हो तो मेरी ओर से इन फूलों को शिव जी के चरणों में चढ़ा देना बिट्टी।
1: क्या?
2: नहीं नहीं, गलत नहीं समझो, गलत नहीं समझो। मैं समय पर नहा धो नहीं पाता ना बेटा। अब कभी नहा धो भी लूं तो पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है। यही एक जोड़ी कपड़ा है, यही धोता हूँ यही पहनता हूँ। अब कभी नहाता हूँ तो कभी कपड़ा धोता हूँ। बस जब भी कभी कोई सवारी लेकर धाम में आता हूँ ना, तो बस दूर मुख द्वार से हाथ जोड़कर माथा टेक लेता हूँ। आपने कहा था कि आज सुबह बाबा के दर्शन के लिए जाएंगी, इसीलिए सवेरे जल्दी उठकर ताजे फूल तोड़कर लाया हूँ। हाँ, इन्हें मेरी तरफ से उनके दरबार में चढ़ा देना, मेरी हाजिरी लग जाएगी बिट्टी। हाँ, अरे मेरे भक्ति भाव के ये पुष्प उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। बस न जाने कभी कृपा हो जाए मेरे ऊपर भी। है वो तो काशी के नाथ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की कृपा से रोजी रोटी मिल रही है बेटा। बस मना मत करो बेटा, ले लो ले लो।
0: बूढ़ा शिवजी की अदृश्य कृपा पर पूर्ण रूप से कृतज्ञ था और आभार में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता था। उसकी इस दयनीय दशा को देखने और अब तक की बातें सुनने के बाद प्राजक्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे आगे कुछ कहे या पूछे।
1: हाँ बाबा बिल्कुल, लाइए दीजिए ना, मैं इन्हें संभाल के रख लेती हूँ।
0: प्राजक्ता ने एक पन्नी में सारे फूल समेटकर पर्स में रख लिए। बूढ़ा गंभीर मुद्रा में रिक्शे पर बैठकर पैडल चलाने लगा। वो सड़क के उस पार पहुँचे ही थे कि उनकी रिक्शा में कुछ खट की आवाज आई और रिक्शा रुक गया। उसने पूछा,
1: अरे क्या हुआ बाबा, ये आवाज कैसी थी?
2: कुछ नहीं बिट्टी कुछ नहीं, चेन उतर जाती है। अब अभी अभी ठीक किए देता हूँ, अभी ठीक किए देता हूँ, देर नहीं होगी।
0: दो मिनट में कुछ ठीक कर वो पूर्ववत रिक्शा चलाने लगा। विश्वनाथ गली तक पहुँचने में यही क्रम दो तीन बार चलता रहा। वो जानता था कि उसके रिक्शे का मर्ज क्या है, किंतु वो उसका इलाज कराने में असमर्थ था, इसलिए खुद ही कुछ काम चलाऊ उपाय करके आगे बढ़ता जाता। मुख्य मंदिर मार्ग पर पहुंचकर वो एक किनारे रिक्शा लेकर खड़ा हो गया। प्राजक्ता ने उसे 500 रुपए देने की कोशिश की, किंतु उस संतोषी जीव के लिए कल के दिए 50 रुपए ही बहुत थे, इसलिए उसने आज कुछ भी लेने से इनकार कर लिया। प्राजक्ता चाहती थी कि वो उन रुपयों को ले ले, और वो था कि मेहनत से अधिक कुछ भी लेने के लिए तैयार न था। कुछ पल ठहर कर उसने कहा,
1: ले लीजिए न बाबा, इनकार ना कीजिए।
2: अरे बिट्टी, जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक क्यों किसी के आगे हाथ फैलाओ।
1: अच्छा भोले बाबा, मत फैलाओ हाथ, पर बताओ अगर आपकी बेटी देती तो आप ना लेते? बिट्टी भी कहते हो और लेते भी नहीं।
2: अरे बिट्टी, बेटियां तो तुम हो ही मेरी, इसीलिए तो मैं आया हूँ।
1: क्या मतलब?
2: मेरा मतलब है कि तुम भगवान के दर्शन करने जाओ। जाओ जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, पट खुलने वाले।
0: मुख्य द्वार से प्रवेश कर भीतर आंगन के उस पार मुख्य मंदिर में प्रवेश किया तो पाया कि पट अभी खुला ही नहीं है। कल जिस माली ने उससे फूलों की बड़ी माला लाने को कहा था वो अभी तक नहीं आया था। समय हो चुका था, वो आता ही होगा, ये सोचकर प्राजक्ता भीतर पट के ठीक सामने बैठ गई। जो भक्त पहले से पहुँचे थे वे आँख मूंद कर संकीर्तन

वे भी आँख मूंद कर कीर्तन का आनंद लेने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में प्राजक्ता बाहर आंगन की ओर देखती, किंतु फूल लेकर अभी भी प्रमुख माली नहीं पहुंचा था। मंदिर का पट खुलने ही वाला था। कल उसने कहा था कि पट खुलने से पहले ही पहुंच जाता है, किंतु आज कोई अता पता न था। वो मंदिर का इकलौता माली था। उसके न आने से सारे भक्तगण खाली हाथ ही दर्शन को विवश हो गए।

भीड़ इतनी हो चुकी थी कि आंगन की ओर देख पाना मुश्किल हो गया था। वे दोनों बहुत आगे पट के बिल्कुल ठीक सामने बैठे थे। पट खुला, बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगने लगे। आरती शुरू होकर अपनी गरिमा के साथ चलती हुई खत्म हो गई। जय घोष होने लगे। उसने आसपास देखा, किसी के हाथ में फूल माला नहीं थी। ये स्पष्ट था कि माली अब भी नहीं आया है। उस दिन आरती के बाद श्री काशीनाथ को फूलों की कोई माला न पड़ पाई। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि आज लौटते समय मैं प्रभु को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाई।

कहाँ तो सोचा था चलने से पहले बेला गुलाब की एक बड़ी सी माला चढ़ाऊंगी और यहाँ तो आज अर्पण के लिए एक फूल तक नसीब नहीं। इस विषय में सोचते ही उसे उस बूढ़े के दिए हुए हर सिंगार के फूल याद आए। उसने पर्स में से रुमाल में लिपटे हुए फूल निकालकर अंजूरी भरकर हर सिंगार के ताजे फूल शिवलिंग पर बिखेर दिए, कुछ पंडित जी को दे दिए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें शिवजी को अर्पित कर दिया। उस दिन श्री काशीनाथ को अपने उसी भक्त के फूल स्वीकार करने थे जो अपने आप को हर कहीं से दीनहीन मानता था, जो मंदिर में भीतर प्रवेश न कर बाहर से ही शीश झुकाकर अपने मालिक को प्रणाम कर लिया करता था। प्रसाद लेकर वे बाहर निकले, माली अब भी नहीं आया था।

प्राजक्ता जान गई थी कि आज माली नहीं आएगा, क्योंकि आज शिवजी पूर्ण रूप से पवित्र हृदय वाले उस बूढ़े के भावों के भूखे थे। वो यही सोचकर गदगद थी कि इस नेक कार्य के लिए बाबा विश्वनाथ ने मुझे चुना। उस दिन मंदिर में वो जो कुछ घटित हुआ उसे प्राजक्ता और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं जान

0: उन अदृश्य भावों और संवादों को महसूस करके वो रोती जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर आकर देखा तो बूढ़ा वहाँ नहीं था। गली के किनारे खड़े उस रिक्शे की ओर इशारा करके उसने बगल की दुकान से सटे बेंच पर बैठे लोगों से उस बूढ़े के विषय में पूछा तो उन लोगों ने कहा,
1: नहीं मैडम, हमने तो किसी रिक्शे वाले को नहीं देखा, किसी बूढ़े को नहीं देखा।
2: ये क्या कह रहे हैं आप, उसका रिक्शा तो यही खड़ा है, फिर आपने कैसे नहीं देखा उन्हें?
1: मैडम जी, सही कह रहा हूँ, हम इधर ही रहता हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और कोई रिक्शा वाला आपको छोड़ गया होगा मैडम जी।
2: ऐसा कैसे हो सकता है, और कोई रिक्शे वाला?
0: वो समझ चुकी थी कि दुकानदार से तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। काशी नगरी में जहाँ संत कबीर दास जी ने घट घट में भगवान के बसे होने का ज्ञान दिया था, वही पाठ वो बूढ़ा आज प्राजक्ता को पढ़ा के गया था।

कैसी लगी आपको आज की कहानी पानी पे लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल। परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। हमें दे इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरी मेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दीचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस करल प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुद्दीचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को और बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप

में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज तुम्हें देखना कैसा होता है। MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 50 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज के साथ।

वैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं सारे काम छोड़कर आप ही से बातें कर रही हूँ, और अगर आप किसी काम में लगे हैं तो ये फिर मेरे साथ नाइंसाफी होगी। जल्दी से जुड़िए मेरे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आपने सुना दिल एक मंदिर फिल्म से रफी साहब की आवाज में ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने और लिखा था बलदेव राज ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने। फिल्म का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन साहब ने और इस फिल्म के सभी गाने हिट थे। अगला गीत अभी के लिए आशा जी की आवाज़ में।

वैसे मैं अपने कंगन की बात करूं तो वो इसलिए खनक रहा है क्योंकि सावन का महीना है और इस सावन के महीने में चूड़ियों के साथ साथ दिल भी खनकता है। गीत आप सुन रहे थे आशा जी और गीता दत्त की आवाज में और फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। संगीत SG बर्मन साहब का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने और इस फिल्म को लिखा था नवेंदु घोष और व्रजेंद्र गौड़ ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, सुनील दत्त, नासिर हुसैन, विपिन गुप्ता, मदनपुरी ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे जो आज भी ज्यादा बाहर हैं शैलेंद्र साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में

लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम दो आंखें बारहा हाथ, संगीत था वसंत देसाई का और गीतकार थे भरत व्यास। ये फिल्म आई थी 1957 में और ये इस फिल्म का निर्देशन किया था वी शांताराम ने और इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। अगला गीत लता मंगेशकर, अगला गीत आप तक सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, वो कहता रह गया मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ। स्वदेश मतलब एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:39 और 48 सेकेंड, और आप

कुसूर तो कुछ भी नहीं है, या तो किसी का दिल लिया होगा या फिर किसी को दिल दिया होगा। और इसकी सजा पता है क्या होती है? ताउम्र उन्हीं दी रातें। गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मिस मैरी और संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म का को निर्देशित किया था एलवी प्रसाद ने। मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, किशोर कुमार और जैमिनी गणेशन ने। अगला गीत फिर से एक जादू भरी आवाज में लता मंगेशकर की आवाज के साथ। अगला गीत अभी के लिए

ये मसला ही तो हल नहीं होता कि मोहब्बत कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, वरना ज़माने में मोहब्बत को समझने के लिए किताबों की कमी कहाँ है। हम सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत जीते हैं, महसूस करते हैं और चले जाते हैं। हम सिर्फ अपने हिस्से का मोहब्बत जोड़ पाते हैं, लेकिन वो पूरी जो एक कहते हैं मुकम्मल परिभाषा है वो अलिखित ही रह जाती है, महसूस किए बिना ही रह जाती है। गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। ये फिल्म आई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्माण किया था एस ए बागर ने और लिखा था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। अगला गीत आयशा जी और रफी साहब की आवाज़ में, आप ही के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जीडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओत्तारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं नहीं जानती कैसे ले जाऊं उस तक जमा की हुई ये बारिश, मैं नहीं जानती कैसे ले जाऊं उस तक जमा की हुई ये बारिश, हालांकि जानता वो भी नहीं कि कैसे जाती है बारिश एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हम दोनों ने कर ली है पार वो पहली सीढ़ी जिसे दुनिया असंभव कहती है। सौदशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सावन का महीना है तो बातों की बारिश और गीतों की बारिश दोनों आप पर जरूर होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कभी कभी जब मैं ऐसे गाने सुनती हूँ ना तो सीधा मुझे ऐसा लगता है कि मैं गांव की मिट्टी में पहुँच गई हूँ। खेत हैं, खलियान हैं, बारिश है और वहाँ कोई रुकावट नहीं है। फिर मुझे अपना शहरीपन एक बेमानी सा लगता है। आप मेरे खास हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ना मैं शहरी लिबास में और शहरी भाषा में खुद को एक बहरूपियन सी लगती हूँ। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

अगर आपकी जिंदगी में भी किसी शहरी बाबू ने या लहरी बाबू ने आपकी नींदें उड़ा रखी है तो फिर नाचना तो बनता है। दिल एक है, जिंदगी एक है और प्यार का मौका भी एक है, तो फिर सोचना कैसा। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में आप ही के लिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि गाना आप ही की पसंद का।

वैसे ये बात तो सच है कि जब प्यार का जादू छाता है तो फिर सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक तरफ गानों का जादू है और दूसरी तरफ सावन का जादू है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बचना बचाना तो छोड़िए, संभलना भी मुश्किल हो जाता है ना। जब सावन का जिक्र छिड़ा है, बारिश का जिक्र छिड़ा है, तो क्यों ना बारिश के गाने सुन लिए जाए, दो गाने बैक टू बैक आप ही के लिए।

तुम्हारी खिड़कियों से जब पर्दा हटेगा, तुम्हारी खिड़कियों से जब पर्दा हटेगा, मोहल्ले की कारों पर तुम्हें एक नाम दिखेगा। हमारे तुम्हारे बीच के जब बादल छटेंगे, प्रीत की धुन में बह उठेंगी कल कल करती नदियाँ। मेरे सीने पर तुम फहराओगी अपनी उंगलियाँ, तुम देखोगी मुट्ठी भर रेत जमा है मेरे सीने पर, जिस पर लिखा है तुम्हारा नाम। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 47 सेकंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

वैसे ये बात तो सच है कि प्यार में आवाज़ ऊंची आवाज़ में दावे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर सामने वाला अनाड़ी हो तो उसे तो प्यार का टेबल समझाना ही पड़ेगा ना, कि मन रात में बहका बहका क्यों होता है, क्यों चांद सितारों में हमें महबूब नज़र आता है ना। अगला गीत आप ही के लिए।

दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुक, मुझे यानी अपनी रात की हम सफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष RSelvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Union Home Minister Amit Shah will today participate in the presentation ceremony of the President's Police Colour. At the ceremony organised by the Puducherry Police, the Home Minister will hand over the ceremonial flag to the force, marking the conferment of the prestigious award. In the afternoon, Union Home Minister will also flag off a Har Ghar Tiranga rally at Muruga Theatre Signal in Puducherry. Mr. Shah arrived in Puducherry on a two-day official visit yesterday. He reached Puducherry by road from Thiruvannamalai and proceeded to Lok Nivas, where he met and held discussions with Lieutenant Governor K. Kailashnathan. He was received by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy and his cabinet ministers and legislators, BJP State President V.P. Ramalingam and former Speaker R. Selvam. The deadlock over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations in Jharkhand now appears to be moving towards a resolution. The Jharkhand government will hold next round of talks with students protesting the alleged exam irregularities in the state today. The talks will be held around 12 p.m., a member of the government panel said, after the panel held meeting with Chief Minister Hemant Soren, apprising him about the progress achieved during the dialogue with the protesters. The high-level talks between the state government and different groups of protesting students was held yesterday at the state guest house in Ranchi in a positive atmosphere. To ensure greater transparency, the government has also issued an official feedback email ID through which students and all its stakeholders can submit their suggestions. In Jammu and Kashmir, Sri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both Baltal and Pehelgam routes from August 9 in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches across along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. He said adverse weather conditions have also been forecast by the India Meteorological Department over the next few days. The Divisional Commissioner said the Chhadi Mubarak will proceed through the traditional Pehelgam route and mark the culmination of this year's Yatra on August 28. So far, more than 480,000 Yatris have performed Darshan at the Holy Cave Shrine. The United States is reviewing a proposal to eliminate the 60-day grace period that allows certain foreign workers on non-immigrant visas to find new employment after losing their jobs. If implemented, the move could require affected workers to leave the country immediately after their employment ends. The proposal from the Department of Homeland Security is currently under review at the Federal Office of Management and Budget. And that is the end of this news bulletin.

अजनबी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे यादों की बारात फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत से मकाम हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे किसी से कम नहीं होते।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में।

दोस्तों, एक बार गीतों को लेकर फिर से स्वागत है आपका आपकी दोस्त वंदना चुग के साथ कार्यक्रम हमराही के अंतर्गत।

बुनियाद फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, आपका कोई इंतजार बेकरारी से कर रहा हो तो कितना अच्छा लगता है, और इंतजार तो प्यार करने वाले ही करते हैं।

एतबार फिल्म से अभी आपने गीत सुना आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में, शब्द रचना हसन कमल की थी और संगीत बप्पी लहरी का। अगला गीत आप सुनेंगे शगुन फिल्म से, सुमन कल्याणपुरा और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है। गीत के बोल तैयार किए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत से संवारा है खयाम ने।

अब अगला गीत तीन देवियां फिल्म से आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

फिर वही दिल लाया हूँ, फिल्म से गीत था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत, के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है लाट साहब फिल्म से, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत से शब्द रचना शंकर जयकिशन की है और संगीत से सवारा है वो बाद में बताएंगे।

मैंने आपसे कहा था कि मैं इस फिल्म में शब्द रचना बताऊंगी और आपको बता दी थी संगीत बताना था। शब्द रचना शंकर जयकिशन की थी और संगीत से संवारा था शैलेंद्र ने। और अब अगला गीत आप सुनेंगे रात और दिन फिल्म से, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ है। शैलेंद्र ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन की संगीत से संवारा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापारिक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Behwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social

अरुणिमा कार्यक्रम में सभी का स्वागत है दोस्तों, और गीतों को सुनवाने के लिए आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त वंदना चूग। नमस्कार।

0: कटी पतंग।
1: फिल्म से भी आपने गीत सुना, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा आरडी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे अनपढ़ फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में है। गीत रचना राजा मेहंदी अली खान की है।

और संगीत मदन मोहन का। दोस्तों, बहुत ही कम लोग दुनिया में होते हैं जो अपना प्यार किसी के प्रति बनाए रखते हैं, और वो खुश नसीब लोग होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार के काबिल होते हैं।

0: दोस्तों, बहुत बार बहुत सी चीज़ें हमें उम्मीद से ज़्यादा मिल जाती हैं और फिर हमें लगता है कि शायद हम इसके काबिल थे। हम तो चाहते हैं कि आपके सपने भी ऐसे पूरे होते रहें और आपको उम्मीद से ज़्यादा मिले।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी? तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूं।

गाइड फिल्म से गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: रुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से गीतों के साथ स्वागत करते हुए मैं आपकी दोस्त वंदना चौक।

यकीन फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे गूंज उठी शहनाई फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ, भरत व्यास के बोल हैं और संगीत वसंत देसाई का।

और अब एक छोटा सा अंतराल। दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीत चल रहे हैं और गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

बहुत बार आप कई लोगों से मिलते हैं तो आप सोचकर ये फील करने लगते हैं कि उनका मिलना आपकी जिंदगी में बहार ला रहा है और अच्छा भी साबित हो रहा है। स्वीकार किया मैंने, फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, निदा फाजली की रचना थी और उषा खन्ना का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे कर्तव्य फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ, वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा इंतज़ार ही करते रहते हैं, और इंतज़ार करने वाले जिनकी इंतज़ार होती है वो नहीं आते। और अब अगला गीत बड़े दिल वाला फिल्म से आप सुनेंगे, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत आर डी बर्मन का।

दोस्तों, अब करुणा कार्यक्रम में, अरुणिमा कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे हाथ की सफाई फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया गीत है, गुलशन बाबरा की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। बहुत बार हम एक दूसरे से वादा कर बैठते हैं कि हम जरूर निभाएंगे, लेकिन कारणवश अगर नहीं निभा पाते या परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वादा वही करें जो निभा सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं और जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विन से कल फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटे दी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे दी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और कोटे दी आइवर की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R Selvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृहमंत्री मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। इससे पहले सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्रियों ने कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए गए हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने बताया कि बारिश के कारण यात्रा मार्गों के संवेदनशील हिस्सों की मरम्मत और रखरखाव आवश्यक हो गया है, जिसका काम सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth

राधा का भी श्याम बोलो, मीरा का भी श्याम, ये तो प्रेम की बात है और हर किसी का प्रेम अद्भुत और अनोखा है। गीत गाता चल फिल्म से ये रचना आपने सुनी आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगली रचना आप सुनेंगे कोहिनूर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी की रचना है और नौशाद का संगीत।

दोस्तों, इस संसार में सत्य ही जीवन है, जिसके आधार पर पूरा संसार टिका हुआ है।

भोरसुहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आपकी दोस्त वंदना चौक के साथ। और बहुत बार दोस्तों हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमसे बात नहीं करता या करती, किसी को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के चाहने या ना चाहने से, बात करने या ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में हर किसी के काम हो जाते हैं।